हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

चित सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआं जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पईआं। मिलो गोपाल निशान बजाए। मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया। मैनू किसे की परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

कोई गावे कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नूं दित्ती है, मेहर कीती है पातशाह ने। आख्या भाई कोई सुने, कोई गावे, कोई उपदेश करे, किसी भी जाति का होवे, कोई नीच कोई ऊंच नहीं, बल्कि सारे का सत्कार है इस

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़

एवी तेरी बख्शिश है, जप जिनू बख्श देवे, तप जिनू दे दे, संयम जिसनू आ जावे ध्यान दे। संयम का मतलब कोई यह लैके ना बैठा रहे मैं खाना नहीं, मैं पीना नहीं, मैं सौना नहीं। संयम का मतलब है जिन्ना लोड़ है उन्ना खा लै, जिनी लोड़ है उन्ना छक लै, जिन्ना लोड़ है उन्ना सौ लै। संयम का मतलब है किसी नेम विच, किसी असूल विच, किसी बंदेज विच जीवन चलता हो। जदों संयम तो बारे होके लोग तपस्या करते हैं तो अग नाल भर जाते हैं, क्रोध नाल भर जाते हैं। साहब कहते हैं जिन्हों तू संयम बख्शिया है, जप तप संयम दया धर्म जिस दे सो पाए, जिस बुझाए अगन आप सो नाम ते आए। विकारां दी अग ते तप तो बाद पैदा होने वाले क्रोध की अग, ये दोवें तरह की अग जिन्हां दी मिट जाए। जिस बुझाए अगन आप सो नाम ते आए, अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए, साध संगत के आसरे प्रभ स्यों रंग लाए। उन्हां विचों फिर गुरु नजर आउंदा। आपां भट बाणी पढ़ रहे सन, प्रताप सदा गुर का, गुरु का प्रताप घट घट प्रकाश भया जस जन के। वह सेवकां जना ते गुरमुखां दे विचों ही गुरु का प्रताप नजर आउंदा, पर उन्हां विचों नजर आउंदा है जो एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करें इशनान। वह तपसी पुरख जिन्हां दा रोज अरदास ना लैंदे आ, जिन्हां गुरमुखा नाम जपिया, हठियां जपियां तपियां सचियारियां प्यारियां सिदकवाना, उन्हां दी गल करने आ। इथे भी उन्हां दी गल है, एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करें इशनान, इशनान करें प्रभात शुद्ध मन, मन भी शुद्ध करन तन भी शुद्ध करन, गुर पूजा बिद सहत करन बड़े ढंग नाल, बख्शी हुई जुगत नाल गुरु की पूजा विच लग जान। कंचन तन होए शरीर भी सोने वर्गा हो जाए, परस पारस कहो गुरु पारस नाल छोके, जोत स्वरूपी ध्यान तरंग हिरदे विच वाहिगुरु अकाल पुरख जोत स्वरूप वस जाएगा, उदा ध्यान अंदर टिक जाएगा। जग जीवन जगन्नाथ जल थल में, ओ जेड़ा जगत नू जीवन देने वाला वाहिगुरु है जो जल थल च रम रहा है। रहा पूर बहु बिद वर्णन जिन्हू कई तरह नाल वर्णन किया गया, सतगुर गुर सेव अलख गत जांगी श्री रामदास तारन तरन। गुरु रामदास सब सच्चे पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह, मेरे सतगुरु तू अपने गुरसिखा विचों नजर आना, तेरा प्रताप तेरे गुरमुखा गुरसिखा विचों नजर आना, तेरी सेवा करने वाले विचों तू नजर आना। जेड़े जप तप करते हुए जीवन नू किसे जुगत संयम च रखते ने, इत्थे साहब कहते ने उन्हां लोगों की ऐसी गल है, साध संगत कै आसरे प्रभ की प्रभ स्यों रंग लाए। जीवन च औगण नहीं रहिंदे, औगण कट मुख उजला हर नाम तराए, जन्म मरण पौ कटेन फिर जोन ना पाए, अंध कूप ते काढ़ेन लड़ आ फड़ाए, नानक बख्श मिलायन रखे गल लाए। पर उन्हां दी गल है जिन्हां नू धन गुरु नानक साहिब जी पातशाह ने जुगत बख्शी ते उन्हां ने

कौराफ जी इमाम साफी मानस की जत संभई के पहचान ही के पहचान बो हिंदू तुर्क कौराफ जी इमाम साफी मानस की जत

तू मेरे काम लग जा, मैं तेरे काम लग जाना। मैनू तू अपना काम दे दे, मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे के काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम का लैन देन करता रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता, जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे के काम आ सकी। संसार भी सी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा, ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी, एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, ये हथ बज गए, ये हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आसी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने ची बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकागर करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया। बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कारज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कारज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कारज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदों सतगुरु कारज करन आ जावे उसले कारजां च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शरीरक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन

दो मित्रां नूं आपस विच कम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा कम करना ही, कहन लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया ना कीता। एक दिन मुलाकात होई।

कोई ना रखना। विश्वास काती अकिरत काना, विश्वास काती किसनू कहंदे ने, जेड़ा किसी नू प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

कुत्ते दा मास शराब च रिन्ने ते मनुख दी कोपरी विच बने। एक रत्तू भरे कपड़े दे नाल बीबी टक के लजा रही सी। रस्ते विच एक मुसाफर पुछ करदा है, बीबी कुत्ते दा मास शराब च रिन्ने मनुख दी कोपरी विच बने, ते इसनू तू टक के क्यों लजा रही है?

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहते ने, मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर,

0: कपूर देख दे,
1: फाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझो दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, आप दिया पंडा ने जलाद बन दे, साहिबजादे इन ने

वर्ण आश्रम करके लोग आपस विच खै खै मर रहे हैं। नाम तो विहूढ़े नरकों के वासी बन

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कवेगा मेरा कोई सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहंदे ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सौना है।

0: सलाह जपियो हो जैसे माँ राजू बाबा ऐ पढ़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनु आंदी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पाल लै तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर ओदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां, भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी बहना विच मेरी औलाद नु पुठे पार पाए जा रहे। अज तो बात फिर करी ऐसी गल की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरना किस्म भी भूल जाएंगे।

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा